0: कि एक समय तमो बह गए बाहर जो माता से रहता थे फल नो नियो बोले अफेर का जो वाता साउदी बाकुंडा से नियो पूजा बत्ती में पिसन
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.